पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है, ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले।

झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले

टाटा यहाँ, नमस्ते को कहते हैं टाटा यहाँ। अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा। ये जिसको बुलाएं करें छ।

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं किसी चोर को ढूंढती है।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Duizenden mensen demonstreerden vrijdag opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov te eisen. Beleggers stuurden het aandeel Apple vrijdag ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond rond 11 uur ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: ये संसार नश्वर है, जीवन के सारे सुख, धन जमीन जायदाद सभी नश्वर हैं। इतना ही नहीं, ये मानव देह भी नश्वर है। अज्ञानवश हम इन्हीं में सुखों को ढूंढते रहते हैं। सच्चा सुख ईश्वर प्रेम में है और सत्कर्मों में है, जो नश्वर नहीं है। क्यों ना इस जीवन को सत्कर्मों के द्वारा सफल बनाएं।

एक बार एक सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा पड़ जाता है। वो उदास रहने लगते हैं। धर्मपत्नी कहती है कि स्वामी, ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना मानो और आप भोले भंडारी की कांवड़ लाकर पावन गंगा का जल उन पर चढ़ाओ और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सेठ जी अपनी धर्मपत्नी की बात मानकर पैदल चलकर नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं और हरिद्वार से बम बम की जयकार लगाते हैं। कांवर लेकर शिव का नाम जपते हुए महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो भोले बाबा उनको दर्शन देकर उनके सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये भजन।

जो बहार आने पर याद आती हो। फिल्म तकदीर का गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज। मुझे तुम उजाला रेडियो है ये सुनने वालों। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमेशा देखें वेबसाइट पर ujala.nl। अगला गीत जो हम तैयार रखे हैं सुनाने के लिए वो होंगे उदित नारायण जी की आवाज में।

अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म डर से निकाला हुआ, हो जाला रेडियो। फिल्म आशिकी का गीत आप सुनिए।

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: दोस्तों, आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूं, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायक टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने।

और राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे हम डरते थे वही बात हो गई। कुमार सानू एंड अलका जी, फिल्म का नाम विजय पट एंड उजाला रेडियो। तो जाने है तो मोई लगे है तो दान एक और गीत, हाँ फिर कुमार सानू जी की आवाज में होंगे।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
1: Vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

और कुछ हाँ कुछ याद आने लगा, कुछ बात जाने लगा, तो फिर इसमें दिल क्या करे, फिल्म का नाम भी दिल क्या करे, उदित नारायण और अलका याग्निक से आप गीत को सुने, और इन्हीं दोनों से एक और गीत, बहुत ही सुंदर गीत।

चांद छुपा बादल में, उदित नारायण और अलका जी से आप सुने फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनटेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

क्या कहे तुमसे जाने जा, गुम हुआ होश है। En dat is de stem van Himesh Reshamya uit de film Aashiq Banaya Apne uit het jaar 2000.

ये जलवा फैशन का है, ये जलवा इट द फिल्म फैशन मेट इन द हॉफ्ट्रोल डेस्टेड प्रियंका चोपड़ा। ये हो तुम हियर बाय उजाला रेडियो, एक से एक मोई मोई गाना, खूबसूरत गाना, हंगामा गाना है, तुझदोर ओके बेचे लव गाना। सो डू दैट हियर बाय उजाला। इट इज मेरा और आपके साथ, और वो भी अमित जयराम के साथ हियर बाय उजाला। सो सेगा एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय द गाना, en geniet lekker van de heerlijke tonen uit de film Dil Bechara. Organica naam heet Kulk

एक हसीन मजा है ये, मजा है या सजा है ये, क्या कहना, ब्यूटीफुल गाना। फिल्म का नाम है दिल बेचारा और गाना का नाम है तारे गिन। याद स्टेम फॉन मोहित चौहान सामने में श्रिया घोषाल इन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। यू होट से हीरो उजाला रेडियो, उजाला रेडियो है सुनो लो, इस मेरा और आपके साथ और वो भी अमित जयराम के साथ। स्टेम फॉन नेहा कक्कर इन दिस हेलिक सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना।

तुझसे है दिन शुरू, तुझसे ही रात है, मिले ना किताब में जो तुझ में वो बात है। हीर ये नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया। हेलक गाना एक से एक मोई मोई गाना हीर बाय द वन एंड ओनली। Dit is de stem van niemand minder dan Meatbro, Neha Bhasin en Deep Money uit de film Race 3. Met in de hoofdrol niemand minder dan Salman Khan en Jacqueline Fernandez. Geniet lekker van de heerlijke Ghana. Isbaar film Strise uit het jaar 2018. De stem van Sachin Jigar samen met Divya Kumar en Ashta Gill.

आ गया देखो ना आ गया, आओ कभी हवेली पे। फिल्म का नाम है स्त्री, आई दी जार 2018, द स्टेम फ्रॉम बादशाह, निकिता गांधी एंड सचिन जिगर। और गाना का नाम रहा आओ कभी हवेली पे। हेलक गाना ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। यू हर्ड से वंदाग en niet alleen vandaag. Oetjana Radio is 24/7, 24 uur per dag en 7 dagen per week met de allerbeste hits, de allerbeste Ghana. Ik zie ik groep door het Ghana, Hangama Ghana, Orwobi Love Ghana op

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een ongeluk op de A8 in de regio Noord-Holland was het vastgelopen op de A10. Die file is nu oplossende, maar op de A5 is het nog meer vastgelopen vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Een uur vertraging bij de aansluiting met de A10. Rij via de A4 richting Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

हुआ मैं, दुआ से मैं उठा जो तेरा हुआ मैं. द स्टेम फ्रॉम राघव चैतन्या समेत प्रीतम और फिल्म का नाम है एनिमल. या वेलकम बाय उजाला रेडियो, थैंक्स कोमर दुई बाय उजाला रेडियो. या द प्लेक वाई इट फूल्स एंड वारी ऑलटाइम वेलकम बेंट. या तो मैं हूँ अमित जयराम एंड वारी ओक बेंट. वाट यू कैन डू बेंट, सॉर्ग फॉर दैट यू गनीट फ्रॉम दिस मूवी डे.

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद।

0: रंग जाओ जो मैं हाथ लगाऊं द फिल्म ब्रह्मास्त्र ही सुबह उजाला रेडियो द वर्सी केसरिया डांस मिक्स या दे हो नहीं फाक टॉक या द फिल्म ब्रह्मास्त्र दैट इज द फिल्म वेयरिन रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट बिगन टू डेट टाइडस इट मेकिंग फ्रॉम द फिल्म
1: भोली सी सूरत.
0: Ja, en in 2022 kwam die film uit, maar ja, het maken van die film begon al veel eerder. Laten we even teruggaan in de tijd, naar de tijd van Dil to Pagal Hai. Boli si Surat.

0: स्टिक्टिंग अभियन स्टिक्टिंग स्वदेश और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन औखुस्त दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: Rotti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora, baja dijiye. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो।

और ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इस गीत के साथ आपको स्वागत किया जा रहा है इस हिस्सा का प्रोग्राम में। और गीत आप सुने, फिल्म का नाम झुक गया आसमां।

कहने को बहुत कुछ था मगर कह नहीं पाए, ऐसी आत्मा की आवाज में गीता प्रोग्राम में सुने।

खोया खोया जान, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म काला बाजार के गीत आप सुने और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा देखें हम लोगों के वेबसाइट पर, और वो है www.ujala.nl।

और गीत अभी आप जो सुने फिल्म पतीता से निकाले गए। सुनने वालों अब एक गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

अगर किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना मुझे छोड़कर। फिल्म का नाम मेरे हम सफर और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, हम लोगों का तार का नंबर एडमिनिस्ट्रेशन पर है 020 409 08 07।

बता दे कि दिल है जहां दर्द होता है क्यों वहां। फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी और ये उजाला रेडियो है। प्रोग्राम को बनाया जा रहा है पुराने गीतों

मुकेश जी की आवाज और फिल्म का नाम अपने हुए पर आए स्टेशन उजाला रेडियो। हाँ तू जाने है तो

और हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना रहा। झुमरू फिल्म, हाँ झुमरू फिल्म से और आवाज लता जी की। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि लिखने वाले लिख देते हैं, गाने वाले गा देते हैं और सुनने वाले जो है तो बेहोश हो जाते हैं, है ना।

कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, लता जी की आवाज और फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। उजाला रेडियो है ये।

जो हमारे मीत ना होते तो गीत ये मेरे गीत ना होते। मुकेश जी की आवाज और फिल्म आशिक, हाँ फिल्म आशिक से गीत अभी आप सुने।

तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और के चाहोगे तो मुश्किल होगे। मुकेश जी की आवाज, फिल्म दिल ही तो है। इसी फिल्म से एक और गीत हम निकाल रहे हैं, इस बार मन्ना दे जी की आवाज में पेश है।

0: ओ सनम तेरे हो गए हम। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में लता जी एंड मोहम्मद रफी साहब से आप सुने फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।
1: आजा रे

तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। हेमंत कुमार uit de film Khamoshi, een film uit het jaar 1970. En u luistert naar Ujala Radio. अब लता जी के साथ हेमंत कुमार को आप सुनेंगे।

खिलते हैं गुल यहाँ और मिलके बिछड़ने को। फिल्म शर्मिली का गीत किशोर कुमार से आप सुने। कुछ पुराने गीतों हम आपको सुना रहे हैं और अब एक बहुत ही पुराना गीत सुनिए।

सैया दिल में आना रे और आके फिर न जाना रे। आप सुने शमशाद बेगम की आवाज में, बहुत ही पुरानी फिल्म बहार से 1951 में फिल्म बनाई गई है 1959 में, और इस फिल्म में उन दिनों काम किए हैं वैजयंती माला के साथ करण देवन का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे। वैजयंती माला को तो तकरीबन हर एक पहचानते हैं। अगला गीत पेश है और अब मोहम्मद रफ़ी साहब हिस्सा ले रहा है।

खोया चांद और खुला आसमां, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म काला बाजार से आप सुने उजाला रेडियो है। ये पसंद है ना, मोई लगे है तो। एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब, इस बार आशा जी के साथ।

वो दीवाना ढूंढती हूँ। ओहो हसीना जुल्फों वाले। तीसरी मंजिल फिल्म का नाम और गीत के गाने वाले मोहम्मद रफी एंड आशा जी। एंड या किस्ट फॉर द खरोचते, या किस्ट फॉर उजाला रेडियो। अब सुन गीत। इन फ्रॉम द टॉप नंबर्स

लता जी की आवाज और फिल्म पाकीज़ा से आप सुने उजाला रेडियो पर। कुछ पुराने गीत तो हम आपको सुना रहे हैं ना। काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से गीत सुनिए।

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: जुआर उजाला रेडियो का पैगाम आपके खिदमत में नशर किए जा रहे हैं। हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं शहीद गुलजार की तरफ से। प्रोग्राम को आप सुनते रहना, सुनते ही जाना। लीजिए सिलेक्शन अर्ज है फिल्म महान से, प्यार में दिल पे मार दे गोली, अरे मार ना गोली, ले ले मेरी जान।

अपना। अरे जाने जहां मर कर भी यहां तेरा पीछा छोड़ू ना। फिल्म महान से किशोर दा और द मैरिड क्वीन आशा जी की आवाज, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं। मिले जुले संगीत में आइए अब एक और सेलेक्शन सुनते हैं सैयद अली साहब की आवाज में, ये नगमा तुम नाराज हो।

अगर में पानी बहुत है लेकिन सब पिया नहीं जाता, मेरे दिल में प्यार बहुत है लेकिन सबको दिया नहीं जाता जाता जाता जगजीत सिंह की आवाज में आइए मिलकर सुनते हैं ये शानदार सा गजल। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। आइए मिलकर सुनते हैं जगजीत सिंह को।

आपके दिल बहला रहे हैं और ऐसे में हो जाएगी शोरदा की आवाज में। दोस्ताना नामक फिल्म से सन 1980 का फिल्म दोस्ताना से किशोर दा की आवाज में बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की सड़क पे चली जा रही थी, ब्लैक ब्यूटी।

Yes, my dear, आपने भी सुने हैं किशोर दा की आवाज में ये सिलेक्शन। मिले जुले संगीत में हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म का नाम साजन की सहेली। इसी फिल्म से जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, वो बेवफा किसी और की साजन की सहेली हो गई। सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, स्टेशन है यू आर

रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते आप डायल करें उजाला रेडियो को सुनिए दो सुनिए 409-08-07 पर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक या तो इन्फो आप स्टार्च उजाला .nl The Heart of Millions, the mighty Mukesh Ji ke awaaz mein, tum mehakti jawan chandni ho, chalti phirti koi roshni ho. Aaiye milkar sunte hain The Heart of Millions, the mighty Mukesh ko.

द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी की आवाज में, कि तुम महकती जवां चांदनी हो, चलती फिरती कोई रोशनी हो। क्यों जी मजा आ रहा है मुझे भी यार। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता जी की आवाज में, कि तुम जब भी याद आओगे।

अरे जाने मन, हम आपको क्या बताए कि तुम जब भी याद आओगे ये दिल भराएगा, ये आंख छलक जाएगी। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर की आवाज आप अभी प्रोग्राम में सुने हैं। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आपकी खिदमत में नशर है, और ऐसे में एक और सिलेक्शन हो जाए कि कैसी लग रही हूं मैं, अब हम क्या बताए, हाउ डू आई लुक। फिल्म झूठा सच से आइए मिलकर सुनते हैं कैसी लग रही हूं मैं। द नाइटिंगेल लता जी और किशोर दा की आवाज़।

Yes, my dear, कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए ना क्या ख्याल है। ख्याल बहुत नेक है। आप उजाला रेडियो को सुनते रहना और सुनते ही जाना।

बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया, बड़ी फुर्सत से मालिक आई हंसी तुमको बनाया बनाया। लकी अली की आवाज में आइए अब मिलकर सुनते हैं ओ सनम मोहब्बत की कसम। युवाड़ के सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन, एक मुबारक दिन प्रकट की जा रहे स्टूडियो से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। ओ सनम मोहब्बत की कसम, लकी अली की आवाज़।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net।